ती बेला मैचन की गर्दयोलिन पीढ़ीमा बसेर के कुरा गर्दी हो कहिले हाँस्दी हो कहिले रुदी मलाई नै सम्झे।

ने बोला दिन बारी खेल दो मलाई नहीं भूलो सास पर पछि आमालाई सोध्दो।